0: ପରହିତ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଆସିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ସକାଳ 6 ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा

वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संभाषण ले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी जयपुर केन्द्र आरंभ करुछ। आज सकाळ भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

0: ଶେଷ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଞ୍ଚୋଡ଼ି, ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ସକାଳ 6:55 ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्चमासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीयसंघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि

0: आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन पर जोगाजोग करंतु। मोबाइल नंबर हला
1: 8280306927 किंबा 9449408097 नंबर रे।
0: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों

0: निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण

0: नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: India is accelerating towards universal health coverage.
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
5: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरफ माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार

0: के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचे प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे 5200 टंका छाड़ और रेफरल उपरे कैशबैक आज ही कॉल करंतु 1800102982
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: कार्यक्रम परवर्ती शिल्पी हेले विश्व कल्याणी महंती गीत रचना अशोक मिश्रा।

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचित प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे 5200 टंका छाड ओ रेफरल उपरे कैशबैक आजि कॉल करंतु 1800102982
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: अच्छा दास बाबू आपनको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पजंत एते स्ट्रांग केमि अछि
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेंथि पर मु सतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटीनाथ सीमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहि बरम पेही पाई रही थाए चेटीनाथ सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटीनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
5: परवर्ती शिल्पी हले निवेदिता

0: ସପ୍ତାଧାର ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ପୁଣିଥରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜି ରାତି 7ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण

0: भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलो आकाशवाणी दिल्ली रो कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो प्रसारित होचे मीडियम वेव रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जुगे एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज जुगे और मोबाइल फोन रो न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप माध्यम रे
4: एबे सीएनजी भरि करंतु सीधा संचय
5: गेल गैस सीएनजी स्टेशन रे सीएनजी भरंतु एवं पैसा आपे आपन को फ्यूल वॉलेट रु पैठो होई जीवो ऑटो पई 10,000 टंका कार ओ छोटो जाना पई 15,000 टंका ओ बस तथा बड़ जाना पई 20,000 टंका पर्यंत लाभ उठांतु जहां केवल नुवा सीएनजी गाड़ी किबा सीएनजी किट लगाइले सीमित समय पई उपलब्ध
4: अधिक जानिबा पई कॉल करंतु 1-800-102-9282
3: आरंभ करूछो हिंदी चलचित्र गीतर कार्यक्रम प्रथमे अग्निपथ ये चलचित्र शिल्पी सोनू निगम

0: एबे गेल गैस पीएनजी कनेक्शन नेबा आहुरी सहज सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवार तीनोटी सरल उपाय समुदाय 4000 टंका एका सहित किबा 1000 दिन पर्यंत दिन पिछा 5 टंका नचत प्रत्येक दिन 1 टंका
1: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी प्रथम गैस बिल रे 5200 टंका छाड ओ रेफरल उपरे कैशबैक आजै कॉल करंतु 1800102982
0: गेल गैस सहज कनेक्शन भरोसा योग्य गैस
2: कार्यक्रम रे शेषरे जन्नत ए चलचित्र शिल्पी हले के

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार श्रोताओं। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
3: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल।

0: समीक्षा और बेबी आराध्या साहू,
1: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी,
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा,
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर। श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी। एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello

0: To give your feedback on our programs, you are most welcome. Contact us on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दी क्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
0: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे। मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा इतनी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: इतना जान सुनते NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो सुनते गोटी घोषणा आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो जुवाणी कार्यक्रम रे चलित मई मासर 21 तारीख अर्थात आसंताकाली गुरुवार अपराह्न 5:00 प्रचार करिबो हेला स्पंदन कार्यक्रम एथिपाई विषय रही आतंकवाद देशर उन्नति पाई सबुठारु बड़ बाधा कि ए संपर्क में आपण निज निजर मतामत देवाई फोन करन्तु मई मासर 20 तारीख अर्थात आज बुधवार अपराह्न 3:40 पर्यंत आम फोन नंबर है 0685423-0690। विषयटी पुणिथर कहि रखुछु आतंकवाद देशर उन्नति पाई सबुठारु बड़ बाधा कि आम फोन नंबर है 0685423-0690। घोषणाटी एटी शेष होगा बर्तमान शुणु आज प्रचार होता विभिन्न कार्यक्रम संपर्क सूचना रखी पूर्वाह 11:30 शुणे सुगम संगीत सोरा सार कार्यक्रम तारभा प्रचार कर दिन 12:30 दिन 12:50 शुणे भक्ति गीत हिंदी सुगम संगीत शुणे दिन 1:05 दिन 1:20 प्रचार कर महिला कार्यक्रम घर घरणी एथे शुणे खरा दिन चर्म और केशर जत्न नेबा केमिति ए संपर्क एक साक्षात्कार पर शुणे अन्य एक साक्षात्कार विवाह विच्छेद सम्बन्धी आईन युवबंधु कार्यक्रम जुवाणी शुणे अपराह 5:00 संभार शुणे आम समय जुवाणी ए शिल्पा रथ साक्षात्कार श्रोता अनुरोध में देशी गीत कार्यक्रम हेलो शारदा लागू आगे शुणे अपराह 5:30 श्रीमद भागवत शुणे संध्या 6:20 पुराणा हिंदी चलचित्र गीत नहीं कार्यक्रम चीर सबुज शुणे राति 8:00 राति 8:15 शुणे विशेष सुगम संगीत कार्यक्रम मूर्छना शिल्पी अनिले लक्ष्मीनारायण बेहरा और सुनंदा सामंतराय गीत रचना बसंत कुमार दास संगीत परिचालना धीरेन मोहन पट्टनायक राति 10:30 एकक शिल्पी क्रम में मोहित चौहान कंठ शुणे केतोटी हिंदी चलचित्र गीत शुणिले कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी जयपुर प्रचार करुछु नाटक कटक एक्सप्रेस मूल रचना जगदीश अधिकारी बेतार रूपांतर एवं प्रयोजना मनोज कुमार सामंतराय सहयोगिता शरद कुमार पाढ़ी एवं एम सीता
3: बाबू हाँ इ बस कौट जा बोर्ड लिखा है दुसू नहीं कि एडे अक्षर कटक लिखा है कटक जा तमें कौट की जीव त
4: जीवी बोल जे बस का जीव की
3: हाँ हाँ बस का जीव बस बस पचवाड़ सीट थी जाए बस
4: टिकट
3: टिकट कंडक्टर को मांग दब
5: दुनसेना अरे दुनसेना से फूल मेला कौट जगी दे अरे यार को आम डाकिले शुभ नहीं कि तते
3: सामान मन रखो जिगरो से बोनेट साइड रे फूल मेला रखछ देखो अरे बाबू ई डब्बा तो तुम ऊपर रख
6: गाड़ी चलो पगटा मिस भल
5: सीट खाली अच्छी बोले तो बस कथा कहीं दंडसेना मिसा किस करेडी हेले तमे किस कर
3: ओहो बोले नाटक रूप रागी सब बसले कि अरे तुम्हें इच्छी कहीं ठिया है जो बाबू पचर सीट अच्छे जो बस प्रकाश बाबू अरे दंडसेना है कि रे राइट राइट राइट

0: अरे दुनसना देख रहे हैं गाड़ी टाप ऊपर की नहीं तो
1: नहीं नहीं टाप ऊपर की ना जाएगा।
0: हाँ टिकट टिकट टिकट टिकट
2: अरे
0: तुम रही मुटो टाकु टाप ऊपर दले हेता नहीं
2: गाड़ पादो पकेवा कुथानो नहीं।
0: हाँ तुम कुआड जीवो
1: गुरु
0: टिकट
1: सी गीत ना पको गुरु
2: कुडा
1: सी हमर परम दे गीत
3: सुंदर तारा पन के कला करिया तोरी मुंडे सुंदर तारा पन के कला करिया तोरी मुंडे हसकरी कटा कर के रेला पान खाइला कटरे माने
4: ई पैकेट टिके कटो खडी दियो ड्राइवर बाबू
2: एडसी पछवाडे कंडक्टर क्लीनर को दियो
0: कुआड जीवा आगे सी ड्राइवर केबिन रेका बसतो
4: ओ हो मु सीट सीट का बसबी सीट का बसबी।
0: हां तमन कुआड जीवो सीट नहीं सीट नहीं
5: कोठे एडजस्ट कर दियो विश्वास हो तो जिंद कर देखो
0: केबिन रे बसिबो भले बसो
5: चलो अच्छा घुंचो
0: जा जा
2: जे कुण को बसो आ गया इठी हेले इंजन को गुड़ बाजिबो छेड़ बसो रे तुम सेना
1: आगरो
2: देख देख देख साइड देख साइड देख
1: हां राइट राइट राइट राइट राइट राइट राइट
4: ड्राइवर बाबू तुम बढ़िया लोक हो बोले केडे बजारे काम करि पकु छ केडे आराम रे गाड़ी चले पकु छ
2: बुझलो कि आगे आगरो परा चाकिर रे आउ मजा नै आगे गाड़ी चले इकरी 35 वर्ष होला ड्राइविंग करु छ
4: आगो किस करथलो तो
2: आगरु लाइट गाड़ी चलाउथली तार उतारु लारी चलेली आउ गला 30 वर्ष होला ई गाड़ी लांग रूट रो गाड़ी एका आगे आगो तो दुईटा ड्राइवर दउथले एका संग रे जणे इठरु गुटे जगह जगह जीवो आउ सीटरु आउ जणे चलाउथला सेतबेले अधा अधा चलेबा को बोले मिसा सुविधा असुविधा देखकरी मिली मिसिकरी चलाउथलो आगे एबे तो सब उल्टा आगे एबे तो केते रूल बनाई देलेनी हैं नहीं कोइलो आगो इठरु केतरा बस कटक जाउथला 3टा कि 4टा सीटा मिसा केबी रोड रे फुल घाटी घाटी सोरो सोरो ब्रह्मपुर हे जाउथला हमकु तो नेशनल हाईवे स्वप्न थिला आगे आउ सेतबेले हमरो बस रो इज्जत थिला आगे सम्मान थिला हमकु मिसा चारु को पचारथुले आगे आउ आजि काली आउ नाय आगे प्राइवेट बस आसिकरी समस्या करबाटा जेतिकि दुख तार छु बड़ो दुख होला हमरो डिपार्टमेंट रो लोक माने सब बिकी भांगीकरी खाई देले आगे सुन्ना परा डिपार्टमेंट को अंगाली कर देले रे दोनसेना अरे से गाई मन को साइड कर रे
1: आगरो आगरो कोन से बड़ जाटी का और मोजरे का पल पल गुरु गाई गुनेबे
0: खेदे खेदे
6: हे कंडक्टर बाबू तांगुनु टिके को तो सी साइड सीट टिके छाड़िबे हमरो माइकना को बेसी बांती उठौची
0: अब्बा तांकु को बाबू तांकु को ए ए ए बाबू ए बाबू सी साइड सीट तांकु दे दियो है इटी बांती बांती हले बड़ हाल रहा का
4: बापा
2: तो ड्राइवर थिला आज्ञा थरे बार को गले 3 दिन उतर गायबार सी ई विजयनगर लाइन रे गाड़ी चलाउथवार आज्ञा से मिसा आगो लारी का चलेबार आज्ञा
4: आउ घरे तमे किस करथलो तो
2: घरे आउ किस करबो घरे बापा नथिबा को मार गेल होइगलु आउ पाठ साट को के पचारे 6 क्लास जाका तार उतारु स्कूल ना रे केबे मुंडा बंध तो केबे जगन्नाथ सागर मंगलवार हाट पदा कोलाप ब्रिज केबे माळिया पुटु नले मौलुबटा बुलीबार स्कूल को जिबार नै 3 थर फेल हला उतारु बापा पाठ छोड़े देले आउ क्लीनर चाकर रे लगे देले आउ अभाव असुविधा पैसा पत्र मिसा नथिला तो आज्ञा आउ क्लीनर काम कलु आउ एले से क्लीनर काम कला भितरे ड्राइविंग सीख देली आज्ञा आउ सी दिन रु ड्राइवर तो होई गेली आज्ञा आउ
4: हमर समस्तंकर कथा समान का है ई जन्म रे किए किस काम करिवो सब से ऊपर वाला का ठिकाना करिक रख दीची बाबू
2: सिंधिया का आज्ञा अरे दुनसना
1: आगरु
2: अरे सामना काचरे आज भोलगिरी पानी मारनु

0: ट्रेनिंग आप आंगले बुगनेस पराई रे
1: बुगनेस साथी इतना ट्रेनिंग दे दी
0: कसी मंजी अनल पालो न मेल बिंडेंग गरु बसरी यंगा मला पम यरताई गामले ट्रेनिंग नल डेली गुलजडी नाइ लडको नाइ
1: बहुत बहुत प्रेसिडेंट बता
0: लडा जल्ला बागुल नाइ रे कनी सभापति बागुल नला संपादक सभापति बाखेर
1: गुलजडी नडा
0: रकोले ओ गुलजडी
1: बहुत रंग में थे असलो
0: तीन सरिंग संस्थान आबे डकोले पानी पंचायत सरी पांगले
1: सरकार महिला संघ दाखे अपार्टमेंट नानी इतिन बारे नंबर सरकार थे महिला संघ जाका लगा गलप महिला संघ दिस पो नाना प्रकार सुविधा नको हम बेकन वीडियो नेला पुते वीडियो नेला पुंबा एतेले संघ ने सो महिला संघ जी बंडान आगे गैस ले मु जात जी हां हम अगला लेबे एतेले कुकुरा पालन बास ले मु जात जी एतेले कमेट दिस पो तने असन बार ले मु जात जी तीसरो बार सनूरु आताइंताई जनो आताइंताई एतिले मगन कने होला जी असन ट्रेनिंग दिति बिन जी ये नन्ना नामे लेबु फ्री गागाना तो फ्री हां एतिले समय समय जति ग्रुप लेबे बहुत असुविधा रहा तो डेलेन दे हां आंबे कते आप पत्र ग्राम के साथ जमने आ रहे थे एतिले अंगनवाड़ी घर जा रखे
0: ओ अंगनवाड़ी ने को
1: जिके सतन का आजा के यहां इसी ने तांबे वाल तोड़ी जा
0: जाता थे रंगे
1: में मथुरा गदन अनंत बर्द को लोनो ने इस पर जोतना दे देते कितना सब लेबु निकता है
0: जा
1: कृता के अंबा वाल पे देते दे ज्ञान दो गोदान लेन मेन फॉर अपरतमा सरपंच रखो सरपंच पोरे जिराते मेंबर जी एतिले लोंग लोंग नेगन मेंबर द्वितीय नंबर जी रहता है कने महिला संघ सभापति बरा संपादिका कराने जी वालत जी गोदान में मास्टर समय इतड़ी जा कदा का हम पर फावर देखो कंदा के सरकार बहुत अभी हम आटो दायित्व दी में थे अभी अगलम बिन थे अगलम बिन अभी ब्लॉक इबते तो अभी वन ब्लॉक में दो
0: गुमा
1: गुमा गुमा आइले ने तो ब्लॉक का पुते जी एसीओ एसीओ लोग अभी ऑफिसर रखो अली बरामाई थे ने इति इति मल्ले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती

0: राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर केन्द्र कार्यक्रम शुणुचंती हिंदी सुगम संगीत प्रथमे कंठशिल्पी स्टेविन बेन शिल्पी गायछंती कुमार गीत रचनारू।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी

0: ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही हूँ और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह,
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है।
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा,
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो आप। एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
0: अच्छा,
1: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
0: अरे वाह,
1: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
0: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखिए, बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते जो

0: व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी,
1: उसमें
0: लेकिन
1: फर्क होता है
0: स्वाद
1: स्वाद
0: बिल्कुल
1: का।
0: फर्क होता है।
1: हाँ, क्योंकि पानी का बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना।
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा लगता
1: यात्रा
0: है,
1: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा
0: बहुत
1: मानती
0: सुकून
1: हूँ।
0: मिला।
1: और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है।
0: जी
1: तो अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है।
1: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता

0: से बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है, तो फटाफट लिखिए। हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है, इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती, बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखे,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया। ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और

0: वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए।
0: हाँ।
1: बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिया तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का
0: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई

0: के कारण ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं, और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दें कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हम सब शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बात है आरती है, अगर हम इसे समझ पाएं तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ आता है ना, अच्छी तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन

0: होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ, तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे।
0: हाँ,
1: ये कभी मत मन में लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित, जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
0: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं आप, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए।
0: हाँ।
1: आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है,
1: सबका नजरिया
0: मायना रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में।
0: अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं।
0: हाँ, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल।
0: कि हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अपने मन से सीखिए।
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
0: हाँ, हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है।
1: बढ़ जाता
0: देखने
1: है।
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गांव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ,
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
1: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो, हाँ। तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है,
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। यह हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ये वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व

0: निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कहे ना श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
0: बिल्कुल,
1: वो जो उनके अंदर चीजें है ना, वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए, जरूरी है, भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहां सद्भावना होती है वहां झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है, और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी।
0: तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो

0: उसके लिए बहुत मुश्किल है।
1: जब
0: घूमने जाओ तो अलग बात है
1: जी,
0: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो,
1: हाँ,
0: कभी रहा ना हो,
1: हाँ, हाँ,
0: तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
1: अच्छा,
0: 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
0: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी अग्गे जी वहां पर रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो ये सब भी
1: उदय शंकर जी का
0: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
1: जी।
0: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
1: रहते कैसे
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
1: जी,
0: कि जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है
1: पहाड़ों
0: में कैसे
1: बिल्कुल।
0: तो ये था
1: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
1: जी,
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम
1: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी,
0: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहां से पैदल
1: जी,
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो
1: है,
0: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
1: जी, जी,
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी,
0: उतार देंगे लोग
1: उतार देंगे,
0: ये उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर थी,
0: चरम पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीजें बजाया करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहां आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी, आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया, और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
1: जी।
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
1: जी।
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे, फिर रियाज पे, तो ये तो मैं पहली बार

0: तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
1: जी,
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता
1: जी,
0: हूं,
1: जी,
0: है ना।
1: जी, जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
1: ये जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह वा,
0: तो ये
1: वा।
0: वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूं न सुनाता हूं,
1: जी।
0: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओ
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी। ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: उसको हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी,
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील।
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद इन
0: आरोही
1: लोगों
0: में
1: ने गाया था।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो

0: दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरओबी बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने ये बात
0: ये
1: कही
0: मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
1: जी जी
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं,
1: ओहो,
0: है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए। मजरूर सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ्फुज गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ, मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया है, या सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मुझे सुल्तान
1: आशीर्वाद शायर की बात है ना,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादा तो शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा है। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में

0: दिव्या होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा ये प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया। मतलब
1: अरे अब तो
0: ये
1: शुरुआत कर रहे थे जबकि
0: हाँ
1: जी,
0: मुशायरा तो हो गया,
1: अरे बाप
0: मतलब
1: रे, बहुत बड़ी बात
0: हाँ
1: है
0: तो ये बड़ी बात थी। तो
1: जी
0: ये जो मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
1: जी
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर, फिर
1: जी
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूं जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी।
1: हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले
0: दुनिया
1: गए
0: में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए।
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगी।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें। हाँ तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूं कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके और रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और टेक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ। फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: टोले नहीं, राजेश रुके, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा, और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: है। अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे
0: हाँ जान

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजर्व का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले उनकी यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: राकेश जोशी,
1: उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
0: सब चीजों को संभालते
1: थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
1: हैं, ऐसा कम होता है
0: जी।
1: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
0: खयाम साहब आ गए,
1: लक्ष्मी प्यारलाल जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
0: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
1: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
0: ले सकते हैं
1: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
0: किसी के पास नहीं है।
1: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी,
0: जब
1: गानों पे बातें हो रही है या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
0: जी,
1: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़कर एक
1: प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
0: और
1: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी,
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
0: जी,
1: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से

0: जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी।
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉ, फादर इन-लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और मां को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो
0: जी।
1: सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया।
0: जी जी जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम, मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं सकता,
1: होंगी नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे।
0: हाँ हाँ,
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
0: अरे बाप रे,
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके,
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
0: हाँ,
1: तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, इस करेंगे उसको, मुझे लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा है,
1: ये नहीं होने देंगे।
0: हाँ,
1: मैं भी चलूंगी।
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी।
0: बाप,
1: तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
0: जी जी जी,
1: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
0: और ये है।
1: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है।
0: हाँ,
1: सारा साहस इनका है।
0: क्या बात है,
1: ये उस जमाने में
0: जी। शानदार शानदार, तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ
0: जी। जरूर इरशाद।

0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता,
1: वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के एक आंसू कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा
0: और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: क्या बात है, क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी,
0: मतलब किसी लाइट
1: होता है। हाँ।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।

0: से हम
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ

0: धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मानजी
1: ओई
0: आओ आओ आओ बिगिया बिगिया उती
1: आइले आइले आइले खाइ
0: दाटी एटा बिगला जोर करदस
1: जोर लागो भाई बहिनी मन
0: आले मुमिसा जोर कर देलनी जाटी काइटा बोले तास तास तास तास करी लोक मर जिबारी छिबे
1: तुइ तो जबर तास का खोलनी मामा रे
0: जबर खोर लेकि उना खोर ले मिसा जीवा का जति लोडा लोडा कि नै तो
1: ओई लोडा तो
0: नि जीवा काई भक्त हम लोडा काईबे मुइ तास करनी तुइ तास करुस नै काइटा लोर चाकरी करुस नि काई गड व्यवहार खोलुस नि गुरु इले मुइ तास कर देले तो तुइ गेनी काईबस कि नै
1: ओई
0: न तुइ कोनते टकाईबस रे
1: सेटा सत्ता खा
0: नै सेटा भाई तास कोले काईटा तासी बोले पुनी लोके लोके पसी पुनी
1: ମାତ୍ର ମୁଇଁ ନ ଜାଣି ମାମା ସେ ତାସ୍ ର କଥା
0: ଖାଇ ତାସ୍ କର ବୋଲି ତ

0: हेलो सरदला वागीत
1: आज्ञा नमस्कार।
0: जुआर जुआर के कोइलासनी बाबू कोनतीनी कोइलासनी
1: मैं डुमा लगदिन नाटपुर कोलांडी रो मनोज कुमार पटेल को छ।
2: जुआर लगो बाबू।
1: हां जुआर मैडम केनता आछन?
2: निमाना छु खाय तमे केनती निमाना छस की?
1: आज्ञा आज्ञा।
0: कोने पापु
2: तोर पाटे करा किंती?
1: हां खराबी होउ छे आज्ञा, बरसा भी होउ छे। काली तो बरसा हला हमर साइड रे।
0: एले आमे तो भगवान पिला रे अरे नेकी पानी मारला नि बोले बढ़िया आगा।
2: अरे सत्त अरे
1: आज्ञा आज्ञा।
0: हां एले आज काय की सुनवा सब को?
1: हमन भीतर कलिया रज सुनाई दे।
0: हां सुनाई दे बाबू, एंती फोन करते रहो सुनते रहो सरदा इतरो आल जोर लागो।
1: धन्यवाद आज्ञा, नमस्कार।

0: हटाई देलु मुँह त सिकाइ देलु कहीँ कि से नल चिङडी बुल्ना फर बुन देखि
1: तिहारे बाबा नाई सिन्ता नै सिकारे कोइलु सिन्ते
0: जुब खाइ कि बोल्ने आरी गोटे काट के खाता वार्ता उतुन जुवार पर देश
1: नाले जुवार लागो बाई मनि मन गालुनी
0: हाल जुवार लागो
2: देशिया भाषार कार्यक्रम जयधिशन क्रमें शुणिले हेलो सारदालाखवा गीत उपस्थापना कले मनोज कुमार पात्र एवं संतोषी आचारी आकाशवाणी जयपुर समय वर्तमान संध्या 6:00 बजिबाकु जाउछि हिंदी रे संवाद शुणंतु रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रु शुणिपारिबे अल्प समय मध्यरे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କେତୋଟି ଗୀତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଶୁଣିବେ ଉଜ୍ଜଳ ଆମ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:55 ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:00 ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ଗୀତ। ରାତି 7:30 ପ୍ରଚାର କରିବୁ କୃଷି ଓ କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ କଥାରେ ଶୁଣିବେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରେ ଶୁଣିବେ ଆଜିର ଚାଷୀ। ରାତି 8:00 ଶୁଣିବେ ଭାରତର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ବେତାର ବିବରଣୀ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 8:30 ଶୁଣିବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାତି 9:30 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ମାସିକ ଖେଳ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର, କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ କେତୋଟି ଝୁମର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ରାତି 10:00। ରାତି 10:30 ଏକକ ଶିଳ୍ପୀ

नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंति आदित्य नारायण दास मुख्य संवाद नीट यूजी पुनः परीक्षा को स्वच्छ और निरपेक्ष भावे परिचालना करिबा नै केन्द्र शिक्षामंत्री गुरुत्वारोप मुख्यमंत्री अध्यक्षतारे जारी रही कैबिनेट बैठक जुक्त दुई परीक्षा फल 85% छात्र छात्री कृतकार्य जुलाई मास प्रथम सप्ताह इनस्टांट और इम्प्रुवमेंट परीक्षा पर आरंभ हो आवेदन चांदीपुर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्तर सफल परीक्षण एवं झारसुगुड़ा राज्य में चलित वर्ष सर्वाधिक तापमात्रा 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड विस्तृत संवाद नीट यूजी पुनः परीक्षा को स्वच्छ और निरपेक्ष भाव परिचालना करने सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गुरुत्व प्रदान कर आज केन्द्रीय सुरक्षा और गुइंदा संस्थागुड़िक एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री प्रधान अध्यक्षता करनामी अनलाइन गोष्ठीगुड़िक द्वारा प्रतियोगितामूलक परीक्षा संपर्कित भूल सूचनार व्यापक प्रसारण उपर चिंता प्रकट कर एपरि नेटवर्क गुड़िक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को श्री प्रधान निर्देश देछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक जारी रही भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में अनुष्ठित बैठक में विभिन्न विभाग केतेक प्रस्ताव अनुमोदन लाभ कर संभावना रही। कोलकाता अवस्थापित जापान कन्सुल जनरल इशिकावा ओसी हिसा आज लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात कर जापान और ओडिशा मध्य सहभागिता वृद्धि विभिन्न प्रसंगे आलोचना कर आलोचना समय मुख्यमंत्री आगामी दिन में जापान ओडियारे अधिक निवेश करिबा सह राज्य शिल्पायन प्रक्रिया प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबोली आशा प्रकाश करथिले। जापान कन्सुल जनरल ओडिशार सामाजिक और आर्थिक विकास में जापान सहयोग करने को प्रस्तुत बोली कहिथिले।

0: ରିଟା ମେଲୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ନୂତନ ଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି।
1: ୟେ ଭାରତ ଅର୍ ଇଟାଲୀ କେ ବିଚ୍ କରିବୀ ସହଯୋଗ ଅର୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାତା ହେ। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कहते हैं उभय

0: রাজীব কুমার মাহন্ত।
1: নমস্কার শ্রোতা বন্ধু, প্রস্তুত করুছু গতকালি ভুবনেশ্বর ঠারে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল জোন আঞ্চলিক কৃষি সম্মেলনী 2026 বেতার বিবরণী। গতকালি ভুবনেশ্বরে কেন্দ্র কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ওড়িশা সরকারঙ্ক মিলিত সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিলা পূর্বাঞ্চল জোন আঞ্চলিক কৃষি সম্মেলনী 2026। সম্মেলনকু পূর্বাহ্ন 10টায় মাননীয় কেন্দ্র কৃষি ও কৃষক কল্যাণ তথা গ্রামাঞ্চল বিকাশ মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ওড়িশার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভারম্ভ করে কার্যক্রম আরম্ভে বন্দে মাতরম গান করা। পরে পরে ভারত সরকারঙ্ক কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের সচিব শ্রী অতীশ চন্দ্র স্বাগত ভাষণ প্রদান করে।
2: সর্বপ্রথম ইস্টার্ন জোন কি इस जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आयोजन का प्रेरणा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने दी है कि हम लोग जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे पहले कि क्यों नहीं हम लोग जोन्स में जाके जो हमारे राज्य हैं उनके साथ मिलकर विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पे जो कृषि से संबंधित है उस पर चर्चा करें। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उसको आपके सामने रखें, उसमें जो प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं और यहाँ की जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करें, और साथ ही साथ जो राज्यों में इनोवेशंस हो रहे हैं, जो उनने अच्छे काम किए हैं उसको भी प्रस्तुतिकरण का अवसर मिले ताकि क्रॉस लर्निंग हो सके, राज्य भी सीखे केंद्र भी सीखे और जो उसमें ऐसी चीजें जो दूसरे राज्यों में स्केल अप की जा सकती है तो वो संभावनाओं पर भी यहाँ पे चर्चा हो।
1: ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୃଷିର ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ,
3: ଓଡ଼ିଶାକେ ଲୋକପ୍ରିୟ କର୍ମଠ ଓ କଳ୍ପନାଶୀଲ ମସ୍ତିଷ୍କେ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଜୀ, ଆମର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାରକେ କୃଷି ଓ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଆଦରଣୀ ରାମନାଥ ଠାକୁରଜୀ, हमारे राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, उड़ीसा के माननीय उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय कनक वर्धन सिंह देव जी, बिहार के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी,

छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी और पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया जी, अतीश चंद्रा जी, मांगीलाल जाट जी, उड़ीसा सरकार के भी सभी अधिकारीगण, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन भात भी तो पैदा किसान ही करता है और किसान अन्न उत्पादित करता है, इसलिए अन्नदाता तो है ही, लेकिन केवल अन्नदाता नहीं, किसान जीवन दाता है, क्योंकि अन्न पैदा करने वाला जिंदगी देता है। आज जब हम बैठे हैं, ये केवल कर्मकांड के लिए नहीं बैठे कि एक कार्यक्रम करना तो कार्यक्रम कर लिया, एक तलफ के साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के लिए कृषि आधार है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। हम 140 करोड़ का देश है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर खाद्यान्न कैसे मिले। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं, पांचों राज्यों के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। अन्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। अब धान के उत्पादन में तो उड़ीसा हो छत्तीसगढ़ हो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिहार कृषि रोड मैप बनाने में अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की कृषि को और आगे बढ़ाने में। और आज हम इसीलिए बैठे हैं, कृषि के सामने जो चुनौतियां हम उन पर भी विचार करेंगे, हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उन योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करना है। देखिए तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए, कल कोई देने से इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप। जैसी परिस्थितियां आज, हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे, उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुखी जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हमारे सामने जो समस्याएं बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जिस पे हम सबको मिलकर काम करना है वो है, हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं। पूर्वी भारत की आबादी घनी है, अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो इस छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से मैं फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपेरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से हैं, जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाएं, प्रेरित करें, जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। तीसरी चीज, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद। 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी, खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है। इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार

0: प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। कई जगह पर्याप्त तत्व होते नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदे नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मरे नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाए। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत। मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब ही आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसका फायदा ये होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में, 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा में पैदा हो रही है। क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे, तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है। और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं, साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें, एक साथ चार चार पांच पांच राज्य आएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं कि जो अगर बारिश पे गैप भी हो तो टिक जाए। उड़ीसा जिस तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है कृषि के क्षेत्र में भी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी, मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आपने जो सहयोग किया और कहा कि आइए जगन्नाथ महाप्रभु की धरती पर आपका स्वागत है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सम्मेलन रे ओडिशा रा माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्य रे चासी मानंक कल्याण, आधुनिक ज्ञान कौशल रा व्यवहार और कृषि भित्तिभूमि रा सुदृढ़ीकरण उपरे गुरुत्व आरोप करी निज अभिभाषण रे कहिले,
2: जय जगन्नाथ। आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीयुक्त शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय केंद्र कृषि और किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री श्रीयुक्त रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री भागीरथ चौधरी जी, मेरा सहयोगी ओडिशा सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंहदेव जी, माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीयुक्त रामविचार नेताम जी, माननीय कृषि मंत्री बिहार श्रीयुक्त विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय खाद्य जोगाण मंत्री पश्चिमबंग सरकार श्रीयुक्त अशोक कीर्तनिया जी, केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण सचिव श्रीयुक्त अतीश चंद्रा जी, डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारी वृंद, कृषि वैज्ञानिक, सभी भाइयों और बहनों, मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको श्री जगन्नाथ जी की धरती पर स्वागत है। पूर्व क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 के लिए ओडिशा को चुना गया है। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज वहां पूर्वी राज्यों के लिए कृषि क्षेत्र के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा वहां दिन भर होगी और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और विशेषज्ञों को, जब सारी अधिकारीगण वहां उपस्थित रहे तो मैं आप सब लोगों को इसी आधार पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम सब यहां एक

विशेष परिस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले ढाई महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्य में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन, और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूदी जानते हैं। पिछले दो साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अद्भुतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। जैसा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए कई नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम हमारे राज्य तरफ से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम दिस शब्द कहना चाहूंगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है, और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले, दलहन तिलहन अर्थात पल्सीड और पल्सेस में हमको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारे किसानों को इसी साथ पर ले जाएं, और हमको इसका बहुत जरूरी भी है। आज हमने जैसे ओडिशा में हमने किसानों को बोनस भी बोलते हैं, लेकिन हमने उनको इनपुट असिस्टेंट के नाते पैडी पेकरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं, और एमएसपी के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3,100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेतीबाड़ी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक सीएम किसान सम्मान निधि, तो 6,000 पीएम किसान और 4,000 हमने दो किस्ती में सीएम किसान दे दिए, और देते हुए 10,000 पर ईयर में हमने जो किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है, और हमने एक डिसीजन ले लिया आज कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियर्ण योजना के तहत मिलेट्स बेहतर उत्पादन, अमृत अर्न योजना के तहत ऑर्गेनिक राइस उत्पादन आज हम कर रहे हैं। मिलेट उत्पादन से पानी और खाद का व्यवहार बहुत कम होता है, और लोगों के पुष्टि साधन के लिए ये एक

सुपर फूड है। ये खासकर हमारे आदिवासी इलाकों जहां ज्यादा खेती किया जाता है, इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अधिक ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोल्ड स्टोरेज योजना हमने आज शुरू कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए

0: और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।
1: उद्घाटन उत्सव परे द्वितीय अधिवेशन रे पूर्व क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकारंक प्रतिनिधि माने भिन्न भिन्न कृषि भित्तिक विषय उपरे विशद आलोचना पूर्वक सेमानंकर अनुभव ओ आभिमुख्य उपस्थापन करथिले। ओडिसा सरकारंक तरफरु कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभागर सचिव श्री सचिन रामचंद्र यादव कृषि संप्रसारण उपरे होइथिबा कार्यक्रम संपर्करे तथ्य उपस्थापना करथिले। सेहिपरि पश्चिमबंग सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर प्रमुख सचिव श्री ओंकार सिंह मीना मंजी उत्पादन पाई होइथिबा सर्वोत्तम पद्धति संपर्करे आलोकपात करथिले। परे परे झारखंड सरकारंक तरफरु कृषि विभागर उपनिर्देशक श्रीमती कंचन कुमारी एफपीओ लेड भैल्यू चेन्स एंड एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम उपरे होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे उपलब्धि उपस्थापना करथिले। छत्तीसगढ़ सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार सफल रूपायन संपर्करे आलोकपात करथिले। यहापरे बिहार सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर निर्देशक सौरभ सुमन यादव राज्यरे मका उत्पादन ओ बजार संजोग पाई होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे आलोकपात करथिले। द्वितीय अधिवेशनर शेषरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदर महानिर्देशक श्री मंगीलाल जाट समन्वित कृषि प्रणाली संपर्करे निजर प्रस्तुति उपस्थापना करथिले। अपराह्नरे आयोजित तृतीय तथा उद्यापनी अधिवेशनरे भारतर पूर्व क्षेत्रर विभिन्न राज्यरु आसिथिबा मान्यवर मन्त्रीमाने सेमानंकर वक्तव्य रखिथिले। एही क्रमरे पश्चिमबंग सरकारंक खाद्य ओ जोगाण मन्त्री श्री अशोक कीर्तनिया निज वक्तव्यरे कहिले,
2: मंत्री जी का पास एक रिक्वेस्ट है हमारा, जो हमारा फिशरमैन लोग है, आप उसका ऊपर में थोड़ा ध्यान देगा जरूर। और हमारा जो बंगाल से जो ऑफिसर लोग आया, हम उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करके जा रहा है, यही से ये डिपार्टमेंट के जुड़ा हुआ हर सुविधा पश्चिम बंगाल का आम जनता को मिलेगा। और जितना जल्दी हो सकते हमारा बंगाल को जो जो डिमांड है माननीय मंत्री जी को आप लोग लिख कर देगा। पश्चिम बंगो का आम जनता तरफ से हम यही रिक्वेस्ट फिर भी करके जा रहा है, माननीय मंत्री जी हमारा ये डिमांड जरूर पूरा करेगा। एवं अगले 5 साल में हम वादा करके जा रहा हूँ यही से बंगाल को हम लोग उस जगह में पहुंच देगा जो जाएगा एक टाइम फार्मर लोगों का इंडिया में था।
1: बिहार राज्यर मान्यवर कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा निज वक्तव्य कहिले,
3: आज एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर देश का निर्भर करता है और यह कल्चर कई संदेश भी देता है, कई भावनात्मक जुड़ावों को आज हम जय जगन्नाथ का जिनका दर्शन करते हैं वो तो भी एग्रीकल्चर के प्रसाद से एकादशी जैसे व्रत में भी आज हमारा वह प्रसाद चावल का धान का जिस तरह से जुड़ाव होता है ये लगाव हमारे सांस्कृतिक विरासत को भी बताता है। हम जिस राज्य से आते हैं वह राज्य जनसंख्या में घनत्व के मामले में देश से सबसे ज्यादा, पहले 1106 था, अब लगभग 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है, जबकि देश में यह 400 के लगभग है। जमीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, घनी आबादी होने के कारण जमीन की कीमत जान से ज्यादा है और वह आजादी के बाद संयोग से बड़ी आबादी हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था। आज कई मामले को हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में देखा, एक नया अभियान भी शुरू किया, संभालने का प्रयास भी किया और आपके इस एग्रीकल्चर का अनुभव को लेके राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में 2 महीने के अंदर जनवरी और फरवरी में 47 लाख से ज्यादा एग्री स्टैक फार्मर आईडी हमने बनवाया कृषि विभाग के सहयोग से, हमारे नवदेश्वर जी प्रधान सचिव के रूप में और सीके अनिल दोनों मिलकर के पदाधिकारी भी पूरी टीम भावना से काम किया। मैं आगे जून तक 30 जून तक रखे हैं कि जो लक्ष्य 87 लाख का है उसको पूरा करने की पूरी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ सरकारंक कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग मंत्री श्री राम विचार नेतम तांका वक्तव्य रे कहिले,
4: छत्तीसगढ़ ने हम लोगों ने जो शुरुआत किया है धान से शुरुआत करके धान के बेहतर प्रोक्योरमेंट से लेकर के उनके मेलिंग की व्यवस्था

0: लेकर के बाकी चीजें का पैदावार को कैसे हम बढ़ा सकें, तो हम जहां पैदावार भी बढ़ा रहे हैं उनके मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करें, खरीदने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम सब प्रयोग किए हैं अलग अलग से, और निश्चित हैं आपके पहल प्रयास से, आपके सहयोग से हम लोगों ने, हम कृषि ही नहीं, कृषि के साथ साथ में उद्यानिकी को भी काफी हम बढ़ाए हैं। उद्यान के क्षेत्र में भी हम नवाचार हमारा अलग से हो रहा है, और निश्चित ही हमें कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जब हम दूसरे प्रदेश से हम निर्भरता हमारी थी, लेकिन आज है कि हम जरूरत के से भी अधिक पैदा जब कर रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी सप्लाई हमारा हो रहा है।
1: परे परे ओडिशार माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव तांका वक्तव्य रे कहिले,
2: यहाँ पे शिवराज जी हमको जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन को लेके जो एग्री स्टैक की बात कही गई है, हमें जो टारगेट 44 लाख फार्मर्स का हमको जो दिया गया था, जिसमें से 17 लाख फार्मर्स का हम कर चुके हैं। बाकी सुबह कहा हमारे सचिव ने कि अगस्त 2026 तक हम बाकी को कंप्लीट कर देंगे। दलन तिलन की जो आपने बात कहा है, उस एरिया और प्रोडक्शन को हम पल्सेस का बढ़ा रहे हैं, और उसको पीएम आशा के माध्यम से उसको जितना बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। पल्स मिशन CRFM के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव राइस फॉलो मैनेजमेंट स्कीम में 4 लाख हेक्टर हम करेंगे, प्रोडक्शन 2 लाख मेट्रिक टन करेंगे, प्रोक्योरमेंट 20,000 मेट्रिक टन अभी हमने किया है, पेमेंट जो मार्कफेड डायरेक्टली किसानों को देता है। फोकस हमारा रहेगा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे, 2024 से ही ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने 2026-27 में 60,275 हेक्टर कवर किया है। हम 1 लाख किसानों को अमृत अन्न योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, 640 हेक्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 1280 मेट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन का। बलभद्र जैविक चास मिशन के अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग हमारा हो रहा है। NHM के अंतर्गत 28 कोल्ड स्टोरेजेस हमारे कंप्लीट हुए हैं।
1: यहाँ पर भारत सरकार का कृषि और कृषक कल्याण विभाग का राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौहान तांका अभिभाषण रे कहिले,
3: किसान भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। ऐसी स्थिति में जो वो काम कर रहा है, उस किसान जो आज भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, पर इसका उद्देश्य मेन यही है कि आखिर इस देश का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए जो काम किया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश भर में जो इसकी प्रशंसा हो रही है और किसानों में विश्वास जगा हुआ है। हम हॉर्टिकल्चर में, हम फल और फूलों में आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। मैं तो कह सकता हूँ कि इसके लिए हमारे ICR और हमारे KVK और APO ये मिलकर काम करें, क्योंकि KVK कृषि विज्ञान केंद्र वो है जो सीधे किसान से उसका जुड़ाव होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो APO 10,000 से अधिक पूरे देश में APO बनाए, यदि वो भी ईमानदारी से काम करें तो मैं कह सकता हूँ कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: तंक परे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर तंका वक्तव्य रे कहिले,
0: मैं 2 बिंदु आपसे निवेदित करना चाहता हूँ। बिंदु है अच्छे बीज। हम लोग 22 महीनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अच्छे बीज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, समय पर किसानों को नहीं मिल रहा, उस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को। और दूसरी बात, जब हम स्वस्थ रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेगा तो हम बलवान रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। खेत को स्वस्थ रखना, शरीर

0: को स्वस्थ रखना
1: तभी संभव है जब हम जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खेती पर हम जोर देना शुरू करेंगे। हम पदाधिकारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब तो आप श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो नेचर है उस नेचर को पहचाने हैं और उस नेचर के अनुसार जमीन पर काम करने का कोशिश कीजिए।
2: शेषे भारत सरकारको कृषि ओ कृषक कल्याण विभागर जुग्म सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल धन्यवाद अर्पण करिथिले।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उड़ीसा सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी आगंतुक मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण सहित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हृदय से आभार। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।
2: एठी शेष करुछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 रो बेतर विवरणी। नमस्कार।
4: शुणुथिले पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 संपर्क रे बेतर विवरणी। उपस्थापनारे थिले समीर मिश्र, वैषयिक सहायता जगाइथिले त्रिलोचन बेहरा एवं सनातन मुर्मू, प्रयोजना राजीव कुमार महंत।
5: मान्यवर कृषि और कृषक कल्याण मंत्री अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइतिबा पूर्व आंचलिक कृषि सम्मेलनीर एक बेतार विवरणी सुनिले। रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रसारित होउछि मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ज जोगे। एफएम रो 103.6 मेगाहर्ज रे आपण माने आम केन्द्रर कार्यक्रम सुनुछन्ति। मोबाइल फोन रो न्यूज ऑन एआईआर आप साहाज्यरे मध्य आकाशवाणी जयपुर केन्द्रर समस्त कार्यक्रम आपण माने सुनि परिबे। श्रोता बंधु वर्तमान सुनिबा शास्त्रीय संगीतर कार्यक्रम। आज एथिरे सुनिबा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान करो ख्याल राग हंस ध्वनि।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता

0: के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू

0: किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया

0: मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against

0: स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
1: How do you view this and which are the sectors that can contribute to boosting

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों

0: के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र